0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओबेरुमो अपो कोई चुनवा उइन्ये उइन्ये

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Yeah, yeah, yeah. Just land secret. It's for you.

0: मार मैं पाचो
1: ईटी विन्यो और रेडियो ईटी विन्यो और रेडियो
2: प्रिटी बी नगा अंदर